0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
8: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
9: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
8: एग्जैक्टली, Palisade Calligraphy इज अ ट्रू 7-सीटर विद 3 यूजेबल रोज, कैप्टन सीट्स एंड अ ड्यूल पेन सनरूफ फॉर अ प्रीमियम एक्सपीरियंस।
9: अच्छी है, पर मुझे तो 8-सीटर चाहिए थी।
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
8: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
10: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
11: 11.9%
12: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
13: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
14: शरायत ज़वाबित लागू है।
15: 11.99%।
16: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
17: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

0: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
2: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
2: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
4: शराय तो जवाबत लागू है।
5: One Station. 100 FM.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: This program is brought to you by
8: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
9: Aaj hi donate karne ke liye 0800-111-555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit kare.

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100.
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
4: HBL Freedom Account. जहां खा वहां HBL. HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
5: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
6: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
6: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
7: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी.
8: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्तो के गा रहे हैं.
7: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है.
8: HBL जरई बैंक की वजह तो?
7: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया. ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली.
8: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा?
7: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज. होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो.
9: शरायत ज़वाबत लागू है.
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
11: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
13: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
14: 11.9% 11.9%.
15: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
16: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शराइत और ज़वाबित लागू है.
14: 11.99%.
17: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
18: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
9: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
9: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
19: शराइत और ज़वाबित लागू है।
20: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
11: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी
2: ओ खैर बरकतिया बड़ा मस्त होके गा रहे हैं
1: ओ सते खैरा ने HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है
2: HBL जरई बैंक की वजह तो
1: ओए आहो बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसी वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिता बी खाद भी चंगी आली
2: ते हुन मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा
3: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म मच्छी फार्म जरई ते जानवर लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो
4: शरायत ज़वाबत लागू है
5: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं
6: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड ग्रैंड बोल्ड एंड हार्ड टू मिस
5: बाहर से तो ग्रैंड है अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
5: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया? सब क्यों देख रहे थे?
6: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
2: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
1: खैर है HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
2: HBL जरई बैंक की वजह से
1: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
3: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें
4: शराइत ज़वाबत लागू है
8: किसने कहा था?

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीने रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिले सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%
5: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
7: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
0: शराय तो जवाबत लागू है।
10: One station. 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: This program is brought to you by
12: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त हो के गा रहे हैं।
0: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त हो के गा रहे हैं।
0: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
6: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
9: 11.99%, 11.99%।
10: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99%।
12: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
13: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
2: शराइत ज़वाबित लागू है।
14: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉब सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
15: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
2: 11.99%।
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: This program is brought to you by
8: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।
10: कुक स्टूडियो सीजन 14।

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
0: एंड
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
5: वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: एंड
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: एंड
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
8: It's 10 AM. The Shine Check is brought to you by
6: HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
10: 11.9%
11: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। शरायत और ज़वाबित लागू है।
10: 11.99%।
12: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
14: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
5: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
15: HBL सरे बैंकिंग के पास है। पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरे यालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।

station for maximum music. This is your music.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.9%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.9% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.9%
4: किसने कहा था।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: ये एक फर्स्ट मॉडल था जो कि हमने ग्रीन क्लब का बनाया। इसमें फिर उसके बाद हमने जो सेकंड फेज थी हमारा, ये था कि हम इन बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें जिसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग हो क्लाइमेट चेंज के बारे में और उनको पता लगे कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज और इसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं और इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो इस वक्त आप दुनिया में माहौल देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी में भी शिद्दत आ रही है, सर्दी में भी शिद्दत आ रही है और इनका स्पैन कम होता जा रहा है। इसके अलावा आप देखें कि बारिशों की जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से आपने डिजास्टर्स देखे हैं और इस वक्त आप नेपाल में भी जो हालात देख रहे हैं
1: जी।
0: तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है वो उसका कॉज, उसकी वजह से जो है वो उसका कॉज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखें ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पिछले साल हमने क्लाउड बर्स्ट देखे, तो ये सारे डिजास्टर्स जो हैं क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो हमने कोशिश की कि इन बच्चों को एजुकेट किया जाए उस पर।
1: अच्छा सर, तो हमें ये भी बताइएगा कि इसके, जैसे कि आपने हमें मकासद वगैरह सारा बताया है, तो आप इसकी अचीवमेंट के बारे में क्या हमें बताएंगे कि क्या अचीव किया आपने इसमें, और ये जो आपने जितनी भी सारी बातें हमें बताई हैं इस हवाले से, जब आपने बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह भी दी होगी या आप इसमें कुछ चेंजेस वगैरह लेके आए होंगे, तो अचीवमेंट्स के बारे में आप हमें बताएं।
0: जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेशली जब मैं अचीवमेंट की बात करूं तो उससे पहले थोड़ी सी मैं इंटरवेंशंस की भी बात करना चाहूंगा कि हमने अब तक बच्चों के साथ किया क्या, ताकि आपको भी समझने में अंदाजा हो, हमारे सुनने वालों को भी अंदाजा हो कि हमने किया क्या और उसका रिजल्ट क्या निकला।
1: बिल्कुल सर।
0: तो उसमें हमने बच्चों की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे उनकी ट्रेनिंग्स थी, लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने बच्चों को पढ़ाई, हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई, हमने उनको जो है वाटर कंजर्वेशन सिखाई, यानी कि हम जितने भी अपने वसाइल हैं उनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं।
1: सही।
0: तो ये सारी चीजें जहां तक पढ़ाने की बात है, बहुत सारी चीजें हमारे नसाब में भी इस वक्त बच्चों के नसाब में भी पाई जाती हैं, लेकिन अलमिया ये है कि नसाब में शामिल तो हैं लेकिन उसमें यह है कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं है उनका बच्चों का।
1: सही।
0: तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि जहां बच्चों ने उसको थ्योरेटिकली सीखा उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने सुनने वालों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि ये ग्रीन क्लब्स ने बहुत सारी क्लीन अप ड्राइव्स की रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में, और इदारों के साथ जो हमारे इदारे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के किया। जैसे लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर पिंडी की बात करते हैं रावलपिंडी की तो वहां पर रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसी तरह इस्लामाबाद में भी सीडीए और पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उनके साथ मिलके इन अदारों ने हमारा बहुत साथ दिया
1: जी।
0: और इन बच्चों की जो है वो बहुत रहनुमाई की उनको सिखाने में और उनके पेश ये रहे अदारे।
1: सही।
0: और उसका आप ये देखें कि जब बच्चों ने, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं
1: जी,
0: कि ये ग्रीन क्लब के बच्चे और हम भी और रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी टीम थी और हम कमर्शियल में एक क्लीन अप ड्राइव कर रहे थे। तो जब हम कमर्शियल मार्केट में एंटर हुए और ये बच्चे, इन्होंने मास्क लगाए हुए थे और ग्लव्स पहने हुए प्रॉपर यूनिफॉर्म में, अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में ये लोगों का कचरा कलेक्ट कर रहे थे, लिटर कलेक्ट कर रहे थे गलियों में से, सड़कों में से, मार्केट के अंदर। तो सामने एक मार्केट थी जहां पर दर्जी बैठते थे और वो कपड़ा काटते हैं, जो कतरे हैं वो बाहर फेंक देते थे
1: जी।
0: तो जब बच्चों ने जाके वो कतरे उठानी शुरू की तो एक शख्स बाहर आए और उन्होंने कहा कि बच्चों मजीद कितना आप हमें शर्मिंदा करेंगे, तो प्लीज आप रहने दें, हम खुद इसको उठा लेंगे
1: जी।
0: तो आप ये देखें कि उस वक्त बच्चे अपनी स्टडीज को छोड़ के और उन लोगों का कचरा जो है वो कलेक्ट करने के लिए आए, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उनको रियलाइज हुआ, ठीक है, उन्होंने सोचा कि यार ये बच्चे अपनी तालीम का हर्ज करके और हमारे पास आए और हमारा कचरा, हमारा फैलाया हुआ कचरा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं।
1: ऐसा ही।
0: तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि उनके जमीर ने उनको जो है ना वो झंझोड़ा कि आप इस तरह के काम ना करें। तो एक फौरी रिजल्ट आपके सामने आता है आप जब इस तरह की एक्टिविटीज कर

0: करते हैं और पब्लिकली जब करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, राहगीर होते हैं, वो आपको देखते हैं और उनको अंदाजा होता है कि ये छोटे बच्चे, इतनी छोटी एज के बच्चे जो हैं वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ऐसे।
0: तो जब इनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, फिर इनकी हमने साथ ट्रेनिंग्स की, इनके साथ हमने क्लीनअप ड्राइव्स की, इनको एक्सपोजर विजिट्स करवाए मुख्तलिफ इदारों के। आपको अंदाजा होगा कि इस्लामाबाद में एक रोड है 1 किलोमीटर लंबी अतातुर्क एवेन्यू पे जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है
1: जी।
0: तो हम वहां पर भी बच्चों को लेके गए, उनको बताया और इस तरह की हमने जो है वो एक्टिविटीज की। फिर हमने इन बच्चों के साथ ट्री प्लांटेशंस की। अब तक जो बच्चे हैं वो 3000 से ज्यादा प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज जो हैं वो लगा चुके हैं
1: जी। ग्रेट।
0: तो ये एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है बच्चों की तरफ से। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इनके जो उस्तादजा थे
1: जी
0: वो विजनरी थे, उन्होंने बच्चों को मौका दिया, इनके पेरेंट्स ने बच्चों को मौका दिया और इस चीज को समझा कि बच्चों की तालीम के साथ इस चीज की भी जरूरत है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल शहरी, एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे सामने आए। तो आज ये इतनी छोटी उम्र में, हमने ये जो एज ब्रैकेट सिलेक्ट की थी
1: जी,
0: ये क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक थी।
1: ठीक है।
0: तो इस उम्र के बच्चे जो हैं, एक तो सीखते बड़ी तेजी से हैं
1: जी।
0: हमारी एज ब्रैकेट के लोग तो अब बस कुछ नहीं सीख सकते, जो सीख लिया
1: हाँ जी।
0: बट इस उम्र के बच्चे जो हैं वो बड़ी तेजी से सीखते हैं और इन बच्चों ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने इस काम को सर अंजाम दिया।
1: सही।
0: तो इसके इम्पैक्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक जो है हम बहुत सारे स्कूल्स में हमने इसको जो है जो इसकी आउटरीच बढ़ाई और अब हम तकरीबन 66 स्कूल्स में ग्रीन क्लब्स बना चुके हैं और इन बच्चों को ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे स्कूलों में हमने लाइब्रेरीज यानी कि क्लाइमेट लाइब्रेरीज बना के दी, जहां पर बच्चों के लिए क्लाइमेट पे बुक्स हैं और एक जो लाइब्रेरी का माहौल होना चाहिए यानी कि मल्टीमीडिया इनके पास है और उस पे ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज वहां पर देखते हैं और फिर उसको अमल में लाते हैं चीजों को। इसी तरह हमने मोबाइल लाइब्रेरीज बनाई तीनों इलाकों के लिए, तीनों अजला के लिए हमने लाइब्रेरीज बनाई जो कि गाड़ियों में थी, जो डिफरेंट स्कूल्स में, ये तो 25 स्कूल वो थे जो कि टारगेटेड स्कूल थे, फिर नॉन टारगेटेड थे जहां पर हम लाइब्रेरी के जरिए अपना क्लाइमेट की एजुकेशन को प्रमोट करते रहे।
1: ठीक है। इल्सा अजीम हमारे साथ मौजूद है। इल्सा अजीम, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 स्टूडियोज में, आप यहाँ पे मौजूद हैं, कैसी हैं आप?
2: अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ FM 100 की जिसने हमें मौका दिया और PMPMS की जिसने मुझे मौका दिलवाया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि हमने क्या क्या किया।
1: बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने कहा है, आपने बिल्कुल हमें बताना है और ये बताना है कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि ग्रीन क्लब फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए क्या इकदाम कर रहा है, तो इस हवाले से जो इकदाम होते हैं वो हमें थोड़ा सा बताइए आप।
2: बेसिकली जो हम ग्रीन क्लब हैं, शुरू शुरू में तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने इस चीज को लाया, प्रमोट किया। तो जो बेसिक्स थे वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो हम जो ग्रीन क्लब है, हमने तालीमी इदारों में शजरकारी को फरोग दिया
1: जी।
2: ठीक है। ट्री प्लांटेशन बहुत ही जरूरी कॉम्पोनेंट है आजकल, ठीक है, जिसे बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद हमने कार्बन फुटप्रिंट्स को खत्म करने के लिए हमने साइकिल रैली को फरोग दिया।
1: ठीक है।
2: ताकि और बहुत से बच्चों ने इस बात को अपनाया भी। ठीक है। जो कि बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास इफेक्ट था।
1: सही।
2: ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने प्लास्टिक फ्री कैंपस मेहमात को भी जो है वो फरोग दिया। ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक का यूज ऐसा यूज है जो कि हमारे माहौल को बहुत ज्यादा तबाह कर रहा है।
1: बिल्कुल है।
2: क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज होने में एटलीस्ट 1000 ईयर्स लेता है। ठीक है। जो कि एक इंसान की लाइफ भी नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: ठीक है। और उसके बाद हमने अवेयरनेस सबसे बड़ी बात होती है, आगाही सेशंस किए। ठीक है। और कम्युनिटी आउटरीच के जरिए भी तलबा और शहरियों को मुतहरिक करने की कोशिश की है हमने।
1: ठीक है।
2: ठीक है। और मजीद ये कि हमारी कोशिश है कि हम माहौल दोस्त रवैयों को भी अपना सकें। ठीक है। और मजीद हमारी कोशिश है कि हम माहौल दोस्त रवैयों को फरोग देकर फिजाई आलूदगी में भी कमी ला सकें।
1: अच्छा, चले सही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि इन सरगर्मियों के अमली असरात, अगर हम इसके अमली असरात की बात करते हैं तो वो क्या देखने में आते हैं?
2: सबसे पहले तो तलबा का शोर बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है उसमें, ठीक है। और इसमें हमारे सर अलीशा एबल और मैम विजया का बहुत जो है वो रोल है, और मैं उनकी बहुत शुक्र गुजार हूँ कि वो हमारे लिए रहनुमा बन के आए और उन्होंने आने वाली नस्लों को तबाही से बचाया, ठीक है। और अभी भी अब वो सर अलीशा कहते हैं कि हम गेम चेंजर हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम उन्हें गेम चेंजर बन के दिखाएं। तो सबसे बड़ी चीज होती है शऊर, ठीक है, तलबा में सबसे शऊर इंक्रीज हुआ है सबसे बड़ी बात,
1: राइट।
2: और उसके बाद माहौल दोस्त रवैये भी अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। और जो नौजवान है, जो यूथ है हमारी, वो अब पॉलिसी सतह पर भी आवाज उठा रही है,
1: ठीक है। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा कि लास्ट में आप हमारे लिसनर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से।
0: हाँ जी, मेरी तरफ से तो देखिए, मैं अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हमने इस माहौल को बचाना है और अपनी नस्लों के लिए इस माहौल को बचाना है, तो आज ही से हमें शजरकारी करनी होगी। तो जितने ज्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे उतना हमारा माहौल बेहतर होगा। दूसरा ये है कि हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है, हमने अपनी रोजमर्रा की जो अपना काम है उनमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम कम से कम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, या अगर गाड़ी भी यूज कर रहे हैं तो अकेला बंदा कहीं ना जाए, उसके साथ अगर कोई कंपनी कर सकता है। इसके अलावा हम कोशिश करें कि हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर एनर्जी को यूज करें, जितनी भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं हम वो करें ताकि अपने माहौल को बचा सकें।
1: बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच, हमारे साथ इल्सा भी मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी?
2: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आजकल की यूथ को इस बात को जहन में बिठाना है कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है, हमने खुद अपने आप को बचाना है और हमने गेम चेंजर बन के दिखाना है।
1: बिल्कुल ठीक आपने कहा, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू सो मच।
1: अब पार्क मिशन सोसाइटी, यानी कि आपको बताते चले, KNH और BMZ के माली टाउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा था। और सामीन, साफ हवा हमारा हक है और जिम्मेदारी भी है, आइए दरख्त लगाएं और आलूदगी को कम करें और एक महफूज मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोज बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
7: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
8: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं।

0: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
1: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320 2758 492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zari yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Committee chalana bhi ek alag hi tension hai. Kisi ka cash nahi hai. To kisi ka kal bhejta hu wala excuse aur kisi ko reminder par reminder chahiye. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
3: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
4: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
5: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं।

मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाइल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे। मन

काम से भी जाए कुर्बान हम 100 दफा जाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया तो नहीं किया ही नहीं मैंने तेरा ना होना कबूल कितने ही गिले और कितने ही शिकवे हम होंगे और कितने मजबूर मैंने आईने साफ किए जाने मंजर के चेहरे पे थी मेरी धूल और ये दोनों हाथ खाली आज भी मुझे कुछ हुआ ना हासिल।

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।

0: It's 1 p.m. The Shine Check is brought to you by
1: HBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
7: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं.
0: This program is brought to you by
8: शौकत खानम. लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
9: शौकत खानम कराची की तकलीफ.
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: FM 100
11: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
0: अजान ज़ोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से.
12: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम. लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया है.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, और देखो नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तावुन ना करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। सूरह मायदा।
1: FM 100।

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
4: This program is brought to you by
5: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
6: शौकत खानम कराची की तकमील।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
3: शौकत खानम कराची की तकनीक।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

आम चीजों पर समझौता क्यों करें। श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, काफिरो अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका, अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम न आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। सूरह अनफाल। FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking. Aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
1: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
4: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
5: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
4: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
5: HBL जरई बैंक की वजह तो?
4: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लेता, बी खाद भी चंगी आली,
5: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
4: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
6: शरायत ते ज़वाबत लागू है।
7: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
8: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
10: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: 11.9% 11.9%
13: ओ भाई, क्या है ये 11.9%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.9% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
14: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
15: शराइत और ज़वाबित लागू है।
12: 11.9%।
16: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
17: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
18: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-275-8492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
19: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
5: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
5: HBL जरई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
4: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरे बैंकिंग के पास है। पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
6: शरायत ज़वाबित लागू है।
15: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
20: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
21: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
22: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात।
23: एंड
24: शौकत खानम कराची की तकनीक।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
21: एंड
25: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
18: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
20: एंड मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।

0: Johnny Karate.
1: Thunder Person, your music, only on FM 100 Pakistan.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking. Aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
5: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
6: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
5: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
6: HBL जरई बैंक की वजह तो?
5: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
6: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
5: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवर लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111111425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
7: शरायत ज़वाबत लागू है।
8: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजे या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाए और मौका पाए उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब्ज हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
9: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
5: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL जरई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
7: शराइत ज़वाबत लागू है।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाई जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
2: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: 11.9%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
6: शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%
7: خالص اجزا، بھروسے‌مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
8: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی،
9: او خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
10: خیر ہی خیر ہے، HBL زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
9: HBL زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک HBL زرعی بینکنگ کے پاس ہے۔ پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 111111425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
2: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
3: शरायत ज़वाबत लागू है।
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
7: 11.99% 11.99%
8: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
9: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
10: शराय तो जवाबित लागू है।
7: 11.99%।
11: सब मुड़ के देख रहे हैं।
12: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
13: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
13: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
12: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
13: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
12: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
14: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: One station,
16: 100 FM.
14: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
17: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
18: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
19: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
20: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
2: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
3: शराइत ज़वाबत लागू है।
21: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिसपन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
2: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
3: शरायत ज़वाबत लागू है।

0: فیصد
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99% HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: साबित लागू है।
1: 11.9%
2: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
3: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
4: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत, और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
7: शराइत जवाबत लागू है।
8: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और रब्ता करें 0300-555-0011 पर।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
5: 11.9% 11.9%
6: ओ भाई क्या है ये 11.9%?
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.9% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है,
7: शराइतों से वाबित लागू है।
5: 11.9%
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम कराची की तकदीर।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
13: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
14: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
13: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
14: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
13: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
14: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
15: शराइत और ज़वाबित लागू है।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
17: किसने कहा था पैसे

0: 11.9%, 11.99%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99%।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
4: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
6: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
5: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
6: HBL जरई बैंक की वजह तो?
5: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
6: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
5: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
4: शराइत ज़वाबित लागू है।
7: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: Your location for maximum music. This program was brought to you by
1: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max electric bike aur shandar qeemti inaamat
0: and
2: Shaukat Khanum Karachi ki takmeel
3: aaj hi donate karne ke liye 0800 11555 par call kare ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit kare
0: and
4: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga
0: And
5: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
6: muft fund transfer muft checkbook muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke sath HBL freedom account
7: it's 7 pm this time check is brought to you by
6: HBL freedom account jahan khwab वहाँ HBL HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहाँ ख्वाब वहाँ HBL
8: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800 11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
10: 11.9% 11.9%

0: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
1: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
4: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
5: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
8: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
9: शराय तो जवाबत लागू है।
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
6: ओ खैर है बरकते, आप बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
7: ओ सत्ते खैरा ने, HBL ज़रई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह तो?
7: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
6: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
8: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, ज़रई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
9: शरायत ज़वाबत लागू है।
15: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
16: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
2: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: One station,
2: 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: 11.9%, 11.9%।
6: ओ भाई, क्या है ये 11.9%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.9% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.9%।
8: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
10: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
12: शराइत ज़वाबित लागू है।
13: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं, ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे, फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। सूरह इब्राहिम।

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
6: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
9: 11.9% 11.9%
10: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99%।
12: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
13: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
2: शराइत ज़वाबत लागू है।
14: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
15: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
16: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
15: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
17: Yeah. मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
16: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
15: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
17: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
16: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
17: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
15: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
16: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
15: आइए वेट से आगे का सोचें।
18: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
19: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्म नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300-555-0011 पर।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
20: One Station 100 FM.
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम कराची की तकनीक।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
9: 11.9%
10: ओ भाई क्या है ये 11.9%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.9% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.9%
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
21: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
21: ओ सत्ते खैरा ने, HBL ज़रई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL ज़रई बैंक की वजह तो?
21: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, ज़रई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
22: किसने कहा था पैसे बचा।

0: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
2: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
2: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
4: शराइत ज़वाबत लागू है।

0: It's 8 p.m. The Time Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: One station, 100 FM.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।

0: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।

आइटम नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है कर डाले। 100.1 FM, your location for maximum music.

0: This program was brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. To abhi apni kareebi HPL branch chalo ya apply karo online. Ye offer mehdood muddat ke liye hai.
0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
4: वन स्टेशन
5: 100 FM. फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: शौकत खानम. लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.

0: सौ करोड़।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
3: शौकत खानम कराची की तकनीक।
4: आज ही डोनेट करने के लिए

0: Everybody just have a good time.
1: New music.